विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य और कला, संस्कृति, पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

नेपाल को नया आवाज आवाज विहीन को आवाज जन आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ज़।

किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना पहाड़ी में आग लगा दे पागल का टैग है तू कहे तुझको भी पिला दे हर घूट में स्वैग है Fly boy. Yeah, हम लाइफ पे हाई बॉय yeah, तू रख तेरी राय बॉय yeah, हमसे जलता तू वाई बॉय Don't hate on me bro मैं naturally cool तुझ में है क्लास तो मैं हूँ तेरा स्कूल रूल ना तोड़े हम करते हैं बेंडो शुरू ना करे पर करते हैं एंडो थोड़े सीधे हम थोड़े थोड़े बैक हैं हम आगे बाकी सारों में लैग हैं सौ बात की बात है कि हम चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है

हम लाइफ पे हाय बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय, ये हमसे जलता तू वाय बॉय, डाउन हेट ऑन मी ब्रो, मैं नेचुरली कूल, तू जो में है क्लास तो मैं हूँ तेरा कूल, रूल ना तोड़े हम करते हैं बेंडो, शुरू रघु तुम्हें स्वागत है, रघु तुम्हें स्वागत है, रघु तुम्हें

0: यार इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: I don't know.
0: देख अकेली लड़की अनजान शहर कुछ हो गया.
1: अच्छा देख बैठ एक ही शेयर करना पड़ेगा.

0: यार भूख लगी है पर पैसे नहीं है।
1: खाने के लिए भूख की जरूरत होती है, पैसे की नहीं।
2: काफी राना दिल से दुनिया का क्या है पता।
1: सुपर।

कई पाद्या हो मुस्तु नहीं हार्या हो न ठाटी भनम तुस्तु कई पार्या हो खुद कई पाद्या।

0: 37 जुगु सेवा केन्द्र जुगु 98 51 322 141 चरीकोट सेवा केन्द्र चरीकोट 98 51 32 21 34 काठमाडौँ सेवा केन्द्र काठमाडौँ 98 51 322 147
1: भेषबहादुर मिजार व्यवस्थापक जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बैतिसुर गाउँपालिका 5 मैना पोखरी दोलखा।